0: मुनिस्तुत्याय नमः। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम चतुराय नमः। ओम शक्ति संयुताय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हरये नमः। ओम ब्रह्मविदुत्तमाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम ग्रहपतये नमः। ओम कामिने नमः। ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ओम पाशंकुशधराय नमः। ओम चंडाय नमः। ओम गुणातीताय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम अकल्मषाय नमः। ओम स्वयं सिद्धाय नमः। ओम सिद्धार्थित पदंबुजाय नमः। ओम बीजपूर फलासक्ताय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम कृतने नमः। ओम द्विजप्रियाय नमः। ओम वीतभयाय नमः। ओम गदिने नमः। ओम चक्रिणे नमः। ओम इक्षुचापद्धृते नमः। ओम श्रीदाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम उत्पलकराय नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम स्तुतिहर्षिताय नमः। ओम कुलाद्रिभेत्रे नमः। ओम जटिलाय नमः। ओम कलिकल्मषनाशनाय नमः। ओम चंद्रचूडामणये नमः। ओम कांताय नमः। ओम पापहारिणे नमः। ओम समाहिताय नमः। ओम आश्रिताय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम भक्तवंचितदायकाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम कैवल्यसुखदाय नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम ज्ञानिने नमः। ओम दयायुताय नमः। ओम दांताय नमः। ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः। ओम प्रमत्त दैत्य भयदाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम विभुदेश्वराय नमः। ओम रमाचिताय नमः। ओम निधये नमः। ओम नागराज यज्ञोपवीतवते नमः। ओम स्थूलकंठाय नमः। ओम स्वयंकर्त्रे नमः। ओम सामघोषप्रियाय नमः। ओम परस्मै नमः। ओम स्थूलतुंडाय नमः। ओम अग्रण्यै नमः। ओम धीराय नमः। ओम वागीशाय नमः। ओम सिद्धिदायकाय नमः। ओम दुर्वाबिल्वप्रियाय नमः। ओम अव्यक्तमूर्तये नमः। ओम अद्भुतमूर्तिमते नमः। ओम शैलेन्द्रतनुदोत्सङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः। ओम स्वलावण्यसुधासारचितमन्मद विग्रहाय नमः। ओम समस्तजगदाधाराय नमः। ओम मायिने नमः। ओम मूषकवाहनाय नमः। ओम हृष्टाय नमः। ओम तुष्टाय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। नानाविधपरिमळपत्रपुष्पाणि समर्पयामि।
1: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.
2: ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೀಗ ನೆಹರು ರೋಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
1: ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿಸಿ.
3: ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೇಡಿಯೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 90.1 FM ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ. ಭರವಸೆಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾನುಲಿ.